थोड़ी साई भय दयाल कृपा करता स्वीकार कराए सी। सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म बनाए सी, हुक्म ने हमें परमानता कसम का महल पाए सी। कसम पवे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी। तां दरगह पैदा जाए सी, तां दरगह पैदा जाए सी।

0: गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरन न जाई,
1: धोती टिक्का ते जप माली धान मलेचा खाई, अंतर पूजा पड़े कते बसन जम तुर का भाई, छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए तरंदा महला पहला।
0: मानस खाने करे निवाज श्री भगाएं तिन गल ताक, तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद, उना भयावे ओई साथ कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे आ भरपूर।
1: मथे टिक्का तेड़ धोती कखाई, हाथ छुरी जगत का साई, नील वस्त्र पहर होवे प्रमाण, मिले स्थान ले पुजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे ना जाना, देख के चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, यह अन्न असाडा फिटे, तन फिटे फेड़ करेन, मन जूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है,
0: सुच होवे।

पौड़ी नानक अंतना जापनी हरता के पारावार आप कराए शक्ति फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरियां तुरी चरे बिछार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन यर भरन जात यर पात नहन जिह रूप रंग यर रेख पेख को कह ना सकत किह अचल मूरत यन भाव प्रकाश अमित तोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहन गणजय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत जब लौ नहीं पाग लिलारि उदय तब लौ प्रमते फिरते बहुतायो कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हो मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जगतारन को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु

गुरव जनम हम तुमरे सेवक, अब तौ मिटया न जाई। तेरे द्वारे तुन सहज की, माथे मेरे दगाई। दागे हो हे सोरान मह जूझ, बिन दागे भग जाई। साधु होए सो भगत पछाने, हर लय खजाने पाई। कोठरे मह कोठरी, परम कोठी विचार। गोर दीनी बसत कबीर कौ, ले वह बसत समार। कबीर दी संसार कौ, लीनी जस मसत कपाग। अमृत रस जिन पाया, थेर ताका सोहाग। लिखे कत हे ना छूटिए, खिनो खिन भूलन हार। बखसन हार बखसल, नानक पारे उतार। सुकह टल गोर सेविए, अहनिस सहज सोभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर हर सोह खुर सोह चटिया। तुद डिठे सचे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहे गुरु, साहिब जी तनासरी महला पंजवा। जिसका बिसरै प्राण पत दाता, सोई गनहो अपगा। चरण कमल जाका मन राग्यो, अमै सरोवर पागा। जिसका बिसरै प्राण पत दाता, सो

चरण कमल जाका मन राग्यो, सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा, आलस शीज गया सब तन ते, प्रीतम स्यो मन लागा, रहो जह जह पेखाओ तह नारायण, सगल कटा मह तागा, नाम उदक पीवत जन नानक, त्यागे सब अनुरागा, जह जह पेखाओ तह नारायण, सगल कटा मह तागा, नामे उदक पीवत जन नानक, त्यागे सब अनुरागा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री महला पंजवा, जिस कौ बिसरै प्राण पत दाता, सोई गन हो अभागा, चरण कमल जाका मन राग्यो, अमय सरोवर पागा। नानक सोई दिनस सुहावड़ा, जित प्रभ आवै चित, जित दिन विसरै पार ब्रह्मा, फिट पलेरी रुत, रुत सरद अडंबरो, असु कतके हर प्यास जियो, खो जंती दर्शन फिरत, कब मिलो गुणतास जियो, असुन आओ पिरा सा तन जूर मोई, ता मिलिए प्रभ मिले, दूजे पाए खोई। सतनाम।

साहिब जी असुन प्रेमियो महरा के ओ मिलिए हर जाए मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे माए अस

वीण प्रभ क्यों सुख पाई दूजे नाहे जाए जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आ गाए आप त्याग विनती करहे ले हो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मिलाईया से विछुड़ कतहे ना जाए प्रभ विण दूजा को नहीं नानक हर शरण आए असो सुखी वसंदिया जिना माया हर राय असो सुखी वसंदिया जिना माया हर राय वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आन मिलावे माए।

नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

गए मशक्कत का नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल।

सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियां।

बेअंत तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी। कार क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी। जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वड़े अवर ना कोई। तू जोग जोग एको सदा सदा तू एको जी। तू निःचल करता सोई, तुद आपे भाव सोई वरता जी। तू आपे करह सो होई, तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सहका जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई, जो तौ पावै सोई थीसी। जो तू देहे सोई हाँ पाई अरहाओ। सब तेरी तू सबनी ते आया, जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल। जिस नौ तू जाना एहे, सोई जन जाने। हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया। सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए। तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेख है जान है सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ा पहिले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया। पंक जो मोह पग नहीं चाला, हम देखा तह डूबी अले। मान एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हौ जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जैन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्रापत मानुख देहुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा किता नकाम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जाप ताप संजम

निराकार आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंब, ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत वेदा, ताका कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव, आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, ओतपुज खान बहुर राच दीनी, कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर इकठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो, दुष्ट जेते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तोज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित वै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छाह छुए सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा, जिन नर नाम ते हारो कहा,

सर्व ठौर मोहो सहाय दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहो सब तो हे बखान्यो।

गोविंद दास तुहार रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दों तगा बहु हरि केरा मन जिने वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा कर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनहो संतहो शब्द तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित

दूर पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी सं

तिथ तू समरथ जिथ कोई नाहि, उथ तेरी रख अग्नि उदर माहि। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड जाहि, पाओ जल विखम असगा गुर सबदी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे। काल मह एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे। बिरथा कोई न जाए जे आवै तुदयाहे। हाँ आया दूर हूँ चल कर मैं तकी ताओ शरण आए जियो। मैं आसा रखी चित मह मेरा सब दुख गवाए जियो। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रख हो सरनाई। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने। तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी नूरे अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दैसाहु। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दैसाहु। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहु। सत नाम सुरठ

भुजंतिया सत नाम श्री वाहेगुरु साहिब जी असन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिया हर जाए मन तन प्यास दर्शन कणी

से बिछोड़ कतहे ना जाए, प्राब वेण दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। असो सुखी वसंदिया जेना मया हर राय।

असो सुखी वसंदिया जेना मया हर राय वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

करत षाड बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सुख टल गुर सेवी है, एहन सुसहज सुभाय। दर्शन परस है गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सचा पातशाह, सिर

लेपन सब मह रहया समायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महादिवस मूरत भले जिस को नदर करे, नानक मंगै दर्श दान कृपा करहो हरे। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, असुन प्रेम उमाहड़ क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन घणी, कोई आन मिलावे माए। असुन प्रेम उमाहड़ क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन घणी, कोई आन मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के हो तिन कै लागा पाए। बिन प्रभ क्यों सुख पाईए, दूजी नाहीं जाए। जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए। आप त्याग बिनती कर है ले हो प्रभु लड़ लाए। जो हर कांत मिलाईया से बिछुड़ कत है ना जाए। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। असो सुखी बसंदिया जिन्ना माया हर राय। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। असो सुखी बसंदिया जिन्ना माया हर राय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्व रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है। भगत वछलिया नाथ नाथे, शरण नानक पुरख अचुत है। बिलावल महला पंजवा, ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई। चौ गिरद हमारे रामकार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एका दिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखनहार, सब ब्याद मिटाई। कोह नानक कृपा पही, प्रभ पहे सहाई। सोहला राग गौड़ी दीपकी महला पहला, एको अंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिया, करते का होए विचारो। तित कर गाव हो सोहला, सिवरि हो सिर जनहारो।
तुम गावहु मेरे निर्भउ का सोहिला, हौं बारी जित सोहिलै सदा सुख होए रहाउ। नित नित जियड़े संभालियन देखै गा दे बणहार, तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार। सांबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल, देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यों होवै साहिब स्यो मेल। घर घर एहो पाहुचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला, शे घर शे गुर शे उपदेस, गुर गुर एको बेस अनेक। बाबा जय घर घर ते कीरत होए, सो घर राख बढ़ाई तोए रहाउ। बेसोए चस्या घड़िया पहरा, थिति बारी माहो हुआ। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के तेवेस। राग तनासरी महला पहला, गगन में थाल रव चंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती, धूप माल आन लो पवन चवरो करे। सगल बनराए फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वा जंत फेरी रहाउ, सहस्तव नैन नन नैन है तोहे को। सहस मूर्त नना एक तोही, सहस पद बिमल नन एक पद। गंध बिन सहस्तव गंध इव चलत मोही, सब मह जोत जोत है सोए। तिस द चानन सब मह चानन होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए। जो तिस भावै सो आरती होए, हर चरण कबल मकरंद लोभत मनो। आन दिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल देह नानक सारंग को। होए जाते तेरा नाए वासा, रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे, कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाउ। साकत हर रस साध न जानिया, तिन अंतर हों मैं कंडा हे। ज्यों ज्यों चले चुभै दुख पावे है, जम काल सह है सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बिनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, ईहां खाट चलहो हर लाहा। आगे वसन सुहेला, औद घटै दिन सुरै नारे। मन गुरमिल काज सवारे रहाउ, एहो संसार विकार संसे मह। तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिस है जगाए पिया वै एहो रस। अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सोई बिहाज हो। हर गुरते मन है बसेरा, निज घर महल पावो सुख सहजे। बहुर ना हो

मिल हर जस गायो कोचलम के दुगवायो जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दवायो सर्व सुख हर नाम डाई गुरु प्रसाद ना।

दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। दाता करता आप तू तुस देव है करह पसाओ। तू जानो ही सब सह दे सह जिंद कवाओ। कर आसन डिठो चाओ, कर आसन डिठो।

0: चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर जंजाल नानक मुसे गान में होने खाए गया जम काल महला पहला
1: नचण गुर पैर हलाए न फिर सिर उडुडरावा चटै पाए वेख लो हसै घर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पछड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभउ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा करम चढ़ाओ पिनी रैन जिन्ना मन चाहो सिखी सिखिया गुरु विचार नदरी करम लंघाए पार गोलू चरखा चक्की चक थलवार रोले बहुत अनंत लाटू मधानियां गाह पंखी पहुनियां लैण नसा सोए चाड़ पवाई है जंत नानक पहुंदिया गणत न अंत बंधन बंद पवाए सोए पैकट नचे सब कोए नच नच हसै चल हसे रोए उड़ ना जाही सिद्ध ना होए नचन कुदन मन का।

0: जो कुछ करना सो कर महला दूजा।
1: योग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण खत्री शब्द सूर शब्द सूद्र शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पियो। नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा। एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा तात्मा आत्मा वास दे वस जे को जाने पेओ। नानक ताका दास है सोई निरंजन देव कुंभे बद्दा जल रहे

जग जीतो गुरुद्वार खेला संत थार रात उन मन लेव राख निरंकार कहो कीरत काल थार साप।

सेविया गुर प्रवान साध अजगर इनकिया उन्मान हर हर दर्श समान आत्मा बंत ज्ञान जानिए अकल गत गुर प्रवान जाकी दृष्ट अचल ठान बिमल बुद्ध स्थान पहर सील सुनाओ सकत बदार कहो कीरत कल सार सपत दीप मजार लहना जगत्तर गुर परस मुरार दृष्ट तर्द तम हरन दहन यग पाप प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वश करन सरन जाचक प्रतिपालन आत्म रथ संग्रहण कहन अमृत कल ढालन सतगुर कल सतगुर तिलक सत लागे

0: सदा एक अकल रहे, सदा अकल लिव रहे, करण सो इच्छा चारे, द्रोमस पूर जो निवे, खवे कस विमल बिचारे, एह तत् जानियो, सर्व कट लख बिडाने, सहज पाए संचो, किरण अमृत कलवानी, गुर काम प्रमाण अजर जरियो, सत संतोख समायो, गुर अर्जन कल उच्चरे, जैसे है जोग निज पायो।
1: मन विश्वास पायो, गहर गोदरह दियो, घर नास्ता नठ्यो, अमे अंतर्गत पियो, रिद विकास जाग्यो, लख कल धरी जुगंतर, सतगुरु सहज समाध, रव्यो समान निरंतर, उधारो चित, दारिद हरण, बिखंते कल मल तरसन, सदरंग सहज गल उचर, जस जंप लहन रसन।
2: सदा अकल लिव रह, करण स्यों इच्छा चार है, द्रुम सपूर ज्यो निवै, खवै कस विमल विचार है, एह तत् जानियो, सर्वगत अलख बिडाणी, सहज पाए संचयो, किरण अमृत कल बाणी, गुर गम प्रमाण तै पायो, सत संतोख ग्राह जलियो, हर परस्यो कल समुलवै, जन दर्शन लहणे पयो, हर परस्यो कल समुलवै, जन दर्शन लहणे पयो।
3: नाम अवखद नाम अधार, अर नाम समाद सुख, सदा नाम निशान सोए, रंग रत्तो नाम सियो, काल नाम सुनहर बोए, नाम परस जिन पायो, सत प्रगट्यो रव लोए, दर्शन परसे गुरु के, आठ सठ मज्जन होए।

अमय दृष्टि शुभ करै हरे अग पाप सकल माला काम क्रोध अर लोभ मोह वस कर सब वाला सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवा गुर नव निद दरियाओ जन्म।

0: अंतन पावत देव सबे मुनो इंद्र महाशिव जोग करी हुन भेद बिरंच विचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जन माहे तरी
1: सतगुर खेमा ताणिया जुग जूस समाणे अनप नेजा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत।

0: की गोरे रामदास राखो सरनाई।
1: सुख होटल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफ तख समी नूर अर सौ कुर सौ चटियन तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटियन। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही सबना दावेसाहो। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही सबना दावेसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी बिलावल महला पंजवा छंत एक ओंकार।

मत अपने प्रीतम पावा सखी आओ सखी वस आओ सखी असी पिर का मंगल गाव ताज मान सखी ताज मान सखी मत अपने प्रीतम पावे ताज मान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण शरण दयाल प्रीतम सगल दुरत विखंडन होए दास दासी तज उदासी बहुड़ विधि न तावा नानक पायां पै करहो कृपा तामे मंगल गावा अमृत प्रकाश नाम

मोहनी महाबचित्र चंचल अनेक पाव दिखावे होए टीठ मीठी मन लाग नाम लैण ना आवे ग्रह बने तीर बरत पूजा बाट काट जोहनी

ज्यों आस चकवी दिन चरै नानक पायां पै प्रसंग मेली मछली नीर ना विसरै तन तन हमारे भाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुख है गामी

मेरी से जसोही देख मोही, सगल सहसा दुख हरा, नानक पायां पै मेरी आस पूरी।